दोस्तों, इस गीत की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन इस गीत को सुनवाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, आसपास का वातावरण और वहां की हवाओं से हम वाकिफ हो जाते हैं, और हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, हवाओं फिजाओं की तरह उसमें खुशबू महका दे।

दोस्तों, ये जिंदगी भी इसी तरह छोटी ही है। आज का पल कल बन जाता है और कल का बीता हुआ लम्हा परसों बन जाता है, इसलिए ये जिंदगी दो चार खड़ी होती है, इसे हंसी खुशी से बिता देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी घड़ियां आती हैं। कभी खुशी के मौके आते हैं और कभी हमें अच्छा मूड नहीं होता, वैसे लम्हे आ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को संभाल कर ऐसी घड़ी में रखते हैं।

0: ഇന്നത്തെ പുലർവെട്ടം സമാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും കേൾക്കാം നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക്. എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹത്തോടെ ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ ശാന്തി മാധവി. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे. गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया. केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की. मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा. और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे. इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं. प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा. राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा. इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी. जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर.
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे. ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी. पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा. यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा. वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा. इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी. अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
4: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और

0: व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।

0: बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat Anti-Terrorist Squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South Corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport.

0: जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत

0: को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप

0: the song. The winner takes it all by ABBA. An emotional track that was a chart topper and one of the finest pop ballads. Agnetha sings her heart out in this song. With that beautiful, soulful track, let me bid farewell. Until next Saturday, same time. Good night to all. Rekha Jia signing off. Stay happy, stay healthy. Saturday Night Fever.
1: ആകാശവാണി. ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ദേശീയ സംഗീത പരിപാടി.
2: ആകാശവാണി ഹെ സംഗീത് കെ അഖിൽ ഭാരതീയ കാര്യക്രം മേ ആജ് രാത് പ്രസ്തുത് ഹെ ഖയാൽ ഗായൻ. കലാകാർ ഹെ പണ്ഡിത് അർണോബ് ചട്ടോപാധ്യായ്. किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है. कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया. आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया. पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा. केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ. आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं. आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है. किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है.
3: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. The musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Shri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colourful.
2: इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह.
3: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamala Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
2: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
3: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the Tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: कीमत होगी, उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा। तो इससे सरकार के लिए एक इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती, लेकिन जो भी एजेंसीज आयात करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता, तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन जब इसकी प्रकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे। आज 160-161 का है। और ये भी आप याद रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था। तो अब अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा। बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है। सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें, उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें, तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है। 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा। हर साल 2.5% की दर से ब्याज, जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद आप प्री मिच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। तो एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है।
1: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र,
2: हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ सर, एक प्रश्न था, मैंने एक महीना पहले पूछा था लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था, वो नाम तो ले नहीं सकते, इंडियन कंपनी का, कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये अच्छा बात है या कैसा, हम इसको कैसे कैसे रूप में लें?
0: देखिए जितेंद्र जी, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नज़रिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाजार की जो में जितने शेयर उपलब्ध हैं उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाजार पूंजीकरण आता है। बाजार पूंजीकरण में नियमित तौर पर बदलाव होता रहता है। बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है। और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, जिसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10-15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
1: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द ओसेट फैसिलिटी इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गुजरात इन सानंद दिस इवनिंग, यू नो दिस इज रियली हार्टनिंग। Almost 5 billion semiconductor chips capacity, annual capacity, production capacity. This is humongous given the importance of semiconductors across electronics industries and of course the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of, if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China of course.
0: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field. Many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a complete supply chain for the electronic goods. What we can, you can also call it as a second phase of Make in India. We started with the assembling a mobile handset. Now we will have the entire components as well as the semiconductor, which is a key requirement for any electronic items. So this is going to help in that way. Second thing which you need to remember, that we have started with what we call as the chip designing, then we can go for the fabrication, and then we can go for the packaging.

0: Infinity was in news because one of the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. Mm. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
1: All right.
2: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई. इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी. इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ. विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी शेयर बाजार जैसा ही रहा. निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछल आया. सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे गए. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई. फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपए पर बंद हुआ. हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया. सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा. निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई.
1: शशि जी, द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स. If we look at the backdrop of the last 4 or 5 months, ever since the merits or the West Asian crisis happened, are the bad days behind us and can we look forward to greener pastures in the coming
0: just
1: years?
0: Just last week, I was talking to one of the largest mutual fund of the country. Mm. And the first line, he said that the worst is behind us and we are on a better path. Now, the key concern at this moment is, one is, of course, the monsoon. Of course, we are... coming out from the West Asia crisis.
1: El Nino has
0: El Nino.
1: Yes.
0: So after West Asia, the bigger concern at this moment is El Nino. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. Mm. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the IMD forecast, they are saying that it will be below normal. Mm. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area, 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also at this moment they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month.
1: Right, right.
0: So that the Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
1: Absolutely.
2: Maharashtra se Mangesh phone line par hai. Mangesh ji, sawal puchhiye.
3: हाँ नमस्कार सर.
0: नमस्कार
3: सर. वो आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके रहेगा निवेश करना, इसके बारे में पूछना था. और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहेगा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था.
0: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी. और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए. फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है. तो मुझे लगता है कि अगले छह महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी. लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है. एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें. दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है. देखिए पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है. हम

0: उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मॉनसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है, वहां पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये चार सप्ताह हमने लगातार चौथे सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई, उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी।
1: राइट, और नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रूपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू, और वी कैन नाउ एक्सपेक्ट इट टू स्टेबल एट अराउंड 95 फॉर सम मोर टाइम? व्हाट इज योर व्यू ऑन डॉलर?
0: ओके शंकर जी, इफ यू सी द नंबर्स ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट बाय फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आफ्टर वी हैव सीन दिस टैक्स बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, वी हैव सीन गुड इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिविंग सम सपोर्ट टू रुपी विच वॉज बिलो 95. सो एट दिस मोमेंट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 month और 3 month वी विल हैव सम मोर स्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया क्राइस वेस्ट एशिया सिचुएशन, देर मे बी मोर डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर क्रूड परसेज, दैन इट कैन हैव सम प्रॉब्लम, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months मोर स्लाइडिंग ऑफ द रूपी एंड इट विल बी बिलो 95 और बिटवीन 94 and 95.
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द US मार्केट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टॉक मार्केट्स रिमेन्ड closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major US indices finished the holiday shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week to close at a record high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheered the weaker than expected US jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the US, the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious, and the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve is something which we have to keep in mind, and the month and meeting of Federal Reserve will also determine. But softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the US.
1: Right, and in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Mantra program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers. The Delhi STD code if you're calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
3: CTG, Tapash Chakravarti. Actually, last week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract actually. पता नहीं मैंने क्यों इधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या नहीं मिला आपको ये नहीं है। तो हमारा जो

0: ऑप्शन है वो है मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो सर आप सुन रहे हैं ना?
1: हाँ जी बोलिए बोलिए।
0: हाँ तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ। बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ। तो आप मेरे को बताइए ये ठीक है क्या? ए बेसिकली ए प्लस और ए कैटेगरी बी प्लस ऐसा आता है। तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
1: जी जी
0: और मेरे को इसमें चल रहा है। तो सर ये ठीक ठाक है क्या, ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है।
1: नहीं देखिए आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। म्यूचुअल फंड में भी कुछ जो खास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो। और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना सुरक्षा आपको देगा। वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें।
2: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
2: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution at least for the next 1 month. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
2: Right.
3: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शिशिर जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूँगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।

0: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो क्यू होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा, जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देखी।
1: तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
0: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
2: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
0: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
1: शिशिर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the 4th straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 3 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों को जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब है। और कहते हैं कि इश्क की शुरुआत जितनी मीठी होती है उतनी ही अनिश्चित भी। दिल में नई नई धड़कनें जन्म लेती हैं, सपने आंखों में सजने लगते हैं और फिर एक सवाल बार बार मन में दस्तक देता है, आगे क्या होगा। आज हम आपको लिए चलते हैं 1962 के उस सुनहरे दौर में जब संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। उस दौर की एक बेहद नाजुक रोमांटिक और सदाबहार पेशकश फिल्म हरियाली और रास्ता का ये यादगार बेहद खूबसूरत गीत। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता जी ने और दर्द भरी आवाज के बादशाह मुकेश साहब ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत में।

मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसे लेकर हाजिर हूं मैं फेरोज। दिल जब किसी अनकही चाहत में डूब जाए तो बेचैनी भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। आज अब हम आपको लेकर चलते हैं 1958 के उस दौर में। उसी दौर में एक फिल्म आई थी बेहद खूबसूरत यहूदी, और जहां भावनाओं को सुरों का अनुपम बेहद खूबसूरत साथ मिलता। गीता दत्त और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो आज भी दिल को छू जाती है। शरेंद्र के भावनाओं पूर्ण शब्द और शंकर जयकिशन का अमर संगीत इस रचना को और भी बेहद खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफर पर चलते हैं। एक और बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, प्यार की नाजुक धड़कनों और मधुर एहसासों से सजा ये अनमोल गीत बेचैन दिल खोई सी नजर आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:53 और 15 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर बात जबां से नहीं की जाती। कभी एक मुस्कान, कभी झुकी हुई नजर, तो कभी एक मासूम सा इशारा दिल की पूरी दास्तान बयान कर देता है। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। खामोश इजहार मोहब्बत की मीठी सी कहानी सुनाता है और दिल में उतर जाता है। और यह नगमा है सन 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली से। ये सदाबहार युगल गीत मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की बहुत ही सुरीली आवाजों में बेहद खूबसूरत दिल में उतर जाने वाला है। एसएच बिहारी यानी शमसुल हुदा बिहारी साहब के खूबसूरत बोल और ओपी नैयर साहब के चुलबुले मधुर संगीत ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो आइए मुस्कुराइए और प्यार के उन नाजुक इशारों को महसूस कीजिए जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाते हैं।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजलि रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms.
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 crore पहुंच चुका है.
4: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 crore रुपीस. अंटिल 7, 8 or 9 इयर्स अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज अप्रोक्सीमेटली 46,000 crore रुपीस. डिफेंस

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

डॉक्टर दिवाकर, आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ माँ के पास, ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के

याद आने लगे बचपन के वो दिन, जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव ही

गाड़ी पहाड़ी रस्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल है। वो हंस पड़ी, उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है।

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहां कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहां अकेला रहने दूं? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा

माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी, हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है बेचारी। पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया, तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था, धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम, पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई।

तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

0: जाए सारा।
1: उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थी। बेटा बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है, पहले जैसा समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार, दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना, मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं, और हाँ चाची जी भी तो यहीं है। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना, दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया, बोला लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रहीं। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में, अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया, एक मन जो हमेशा यहीं रहता था इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी? माँ मुस्कुरा दी, बोली मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई, बोले सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। माँ यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली, दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

तो दोस्तों ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रात के इस पहर में। 1:11:04 हुए हैं। गीत सुहाने लेकर अंजलि है आपके साथ। गीत सुहाने उन गीतों की बहार आपके लिए जो सचमुच आपके दिल को सुहा जाए, आपके मन को भा जाए और आपके दिलो दिमाग पर छा जाए। कोशिश पूरी रहेगी रात के इस सफर में दिल की गहराइयों में कोई उतरे, मन मस्तिष्क में बनी तस्वीर में कोई संवरे, या फिर इसके उलट दिल में चुभे नश्तर पर कोई मरहम की तरह मुलायम एहसास बन जाए, या फिर दिल की चुभन दर्द कोई जख्म शब्दों के जरिए बाहर निकल जाए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, याद ना भी करें तो भुलाया भी नहीं जाता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 इस वक्त गीत सुहाने के इस सुहाने से सफर पर अंजलि के साथ हैं आप। तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, मेरी रातों के काले बादल हैं, और ये जुल्फ जो गालों को छूती है जैसे सावन की पहली हलचल है।

आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। लफ्जों में बयां जो हो ना सके, लफ्जों में बयां जो ना हो सके, उस मोहब्बत की गहराई ही कुछ और है। और दिल वही सब तो ढूंढता है।

रात खामोश है, रोती नहीं, हंसते भी नहीं। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी मेरी नजदीकियों की इस खामोशी को सुन पाते हैं।

कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, छुपी हुई आंखों में कोई अनकही सी कहानी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में, खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सांसों में इस तरह बसा कि जुदा होना मुश्किल हो गया।

0: समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब समझ नहीं आता, एक तुम ही तुम नजर आते हो जहां तक दिल जाता है।
1: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे।

0: वैसे नाटक किस लिए?
1: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
0: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही है? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा क्यों?
1: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ। उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप।
2: मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है। बचपन से उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। आप खड़ी खड़ी देख कह रहे हैं, अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
0: काजल, I'm sorry, काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
1: तो कहो।

इश्क की कोई उम्र नहीं होती ना ही कोई दौर होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती ना ही कोई दौर होता है। ये तो वो एहसास है जो बस रूह से रूह तक होता है।

तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तो इस जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम हो जाए।

दिन का हर एक लम्हा, रात की हर एक घड़ी बस तुम्हारी यादों की उंगली थामे गुजरती है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं मोहब्बत में जहां ना वक्त का होश रहता है और ना दुनिया का।

इसी के साथ अब अंजलि आपसे लेगी इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार और आगे का सफर एफएम गोल्ड का जारी रहेगा। आपके लिए रूपा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है।

स्वागत है आप सभी का हमराही कार्यक्रम में। आज आपके लिए संजोकर लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम में वो युगल गीत जिसमें प्यार का मीठा एहसास है, जिसमें दो दिलों की कहानी है, एक दूजे में खो जाने की प्यार भरी दो दिलों की दास्तान है। इन युगल गीतों के साथ सजाकर आपके लिए लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम। जी हाँ, और आज के हमराही कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और सुन रहे हैं हम हमराही के जरिए मोहब्बत की कहानियाँ। जी हाँ, प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए कुछ युगल गीतों को याद कर रहे हैं हम, जिन्हें आज भी हम दिल लगाकर सुनते हैं, जो आज भी हमारे जहन में समाये हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगला ही नगमा हमराही कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। वक्त हुआ है 3:23 और 17 सेकंड।

आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, जैसे सूखी जमी पर बरसात हुई। बातों में कुछ खामोशी भी थी, बातों में कुछ खामोशी भी थी, आंखों में लेकिन 100 बात हुई।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ दिल की धड़कनें ही समझ सकती हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा जिसके शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। फिल्म है आप आए बहार आई, और इसमें क्या महसूस कर रहे हैं दो दिल, आइए जानते हैं।

वाकई प्यार के एहसास को दोस्तों शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ और सिर्फ धड़कने ही समझ सकती हैं। सुनते हैं अगला नगमा ऐसा ही कुछ बेहद ही खास। इस नगमे को हम ले रहे हैं फिल्म मन मंदिर से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

हमराही में आप सुन चुके सुन रहे हैं उन युगल गीतों को जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, बार बार गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से।

दुनिया की रस्मों से चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, वक्त के थपेड़ों से चाहे राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, पर जो रूह से बंधा है वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। ये सच्चा प्यार है साहब, जमाने के आगे कभी झुकेगा नहीं।

और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसे अपनी पुरनूर आवाज से सजाया है लता जी ने और उनके साथ नरेंद्र चंचल जी ने। फिल्म दो शत्रु जिसके संगीतकार हैं आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, और सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा की भी संभावना लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees,

जिसके भीतर अरुणिमा सा उजाला होता है, उसका हर रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। जी हाँ, अरुणिमा यानी सुबह की लालिमा या उगते हुए सूर्य की चमक। अदब में साहस को समर्पित ये खूबसूरत सा नाम और अरुणिमा बनकर धीरे धीरे अंबर पर नया सवारा लेकर आ रही है वो रोशनी की किरण, और रात के हर अंधेरे को मिटाती जाएगी धीरे धीरे। स्वागत है आप सभी का अरुणिमा में, जहां आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आपकी यादों में रचे बसे हम और हमारी यादों में रचे बसे आप, तो ऐसे में क्यों ना एक गीत आपके नाम कर दिया जाए।

0: साथियों, अरुणिमा का ये सफर जहाँ धीरे धीरे रात गहराती है और सुबह की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अपनी चादर तानने की तैयारी करती है, वहीं ठंडी हवा के झोंके कानों को सुकून देती खामोशी भी अपने पांव पसार लेती है। इस खामोशी में एक अलग ही एहसास है, ठहराव का। आइए इसे महसूस करें कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर साहब की पुरनूर आवाज में आप सभी के लिए।
1: मुझे सारे गामा नी धा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जनता ये सोच नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं आता।

साथियों, हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसका मन उसके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक की तरह काम करता है। सकारात्मक विचारों और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को बेहतरीन सोच की दिशा में मोड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो करके देखिए और फिर हमें बताइएगा। कहाँ पर? आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल आप जुड़े हैं अरुणिमा में रूपा धवन के साथ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा के इस खूबसूरत से सफर पर, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात।

दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। हर नया दिन अपने साथ नया अवसर और नई ताकत लेकर आता है। अगर आप मजबूत और सक्षम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास रखना होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको निखारता है और संवारता है। अरुणिमा के सफर पर हम सुन रहे हैं कुछ गीतों को और बातें कर रहे हैं सकारात्मक सोच वाले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जहां आप हैं रूपा के साथ।

कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यानी चुनौतियां, मुश्किलें जिनका सामना हम करते हैं, पर ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने नहीं बल्कि रास्ता सिखाने के लिए आती हैं। बस हमें धैर्य से काम रखना होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता जरूर है, बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो जरूर रंग लाएगी। कारवा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

समय हो चला है 4:44 और 35 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं आपकी और आपकी खुशियों की। जी हाँ, हमारा जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए अगर खुशी और शांति की तलाश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास है उसका शुक्रिया मानिए और जो पाना है उसके लिए प्रयास कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि विचार ही आपका और हमारा भविष्य तय करते हैं। सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

साथियों, हमने बात की खुशी और शांति की। खुशियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सादगी तो उसमें है जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और उसके जो खुशी के पल होते हैं, आँखें बयां करती हैं उन खुशी के पलों को जब आप उनकी सहायता करते हैं। वो लम्हा अपने आप में एक छोटी सी कहानी कह जाता है। तो ऐसे खुशी के मौसम हम सबकी ज़िंदगी में आए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए, किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में।

कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल को ज़रूर संवारा जा सकता है। अरुणिमा का सफ़र सिर्फ यहीं तक। अभी भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी और अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। तब तक के लिए विदा दीजिए, रूपा को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते

0: सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रावोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. In a social media post, Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make the necessary corrections. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the Permanent Operating Base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent for its professionalism, operational excellence and dedicated service under the United Nations peacekeeping mission. In the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match. France will now face Morocco in the quarterfinals. Earlier, Morocco stormed into the quarterfinals with the commanding 3-0 victory over Canada in Houston, Texas. In the final round of 32 matches played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. Colombia will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. Defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. The match will begin at 8 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.

भोर सुहानी लेकर आई ठंडी हवा का झोंका, कलियों ने भी आंखें खोली, मिला नया एक मौका। चहक रहे हैं पंछी सारे, गूंज रहा आकाश, भोर सुहानी बिखेर रही है चारों ओर प्रकाश। हरी घास पर ओस की बूंदे चमकी बनकर मोती, भोर सुहानी बिखराए जग में सुख की पावन ज्योति। जी हाँ, रात का हर अंधकार मिटाकर, सब परेशानियां मिटाकर, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर भोर सुहानी आ गई है। कुदरत का ये निराला रूप हम सबके जीवन में एक नए उजाले के साथ आया है और हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए स्वागत करें इस सुहानी सी भोर का और नाम लें उस प्रभु का जिसने हमें एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया।

सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंबर पर छा रही है, सूरज भी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। इस भोर सुहाने की सुंदरता कुदरत में किस तरह से समाई है, ये आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं वासना फिल्म से, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

किसी ने क्या ख्वाब कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको अस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। माना कि जब मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर तो हमें हताशा तो होती ही है, लेकिन उस हताशा में से भी आशा की किरण छोटी सी कहीं ना कहीं से झांक रही होती है, जो उस समय हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उस आशा की किरण का दामन थामकर हम आसान से उन मुश्किल राहों को पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक अंधेरा है तो लाखों सितारे भी हैं हमारी जिंदगी को, हमारी जिंदगी की राहों को रोशन करने के लिए।

जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हमारे साथ, तो आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है भोर सुहानी कार्यक्रम का और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:30:15। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, भोर सुहानी जो है ना, भोर सुहानी हमारे लिए कुछ चुनौतियाँ भी लाती हैं, कुछ खुशियाँ भी लाती हैं। माना कि हर कदम पर एक नई ताजगी भी होती है और कुछ गहराई भी होती है, जी हाँ, जो पिछले दिन की यादों से जुड़ी हुई होती है। पर अगर लालिमा चाहिए है और हमारे लिए एक ऐसा संदेशा लाई है कि सूरज ने अंगड़ाई ली है और कुदरत में ऐसा रंग घुल गया है कि उस रंग में हमें भी रंगने का संदेश देती है भोर सुहानी, तो हम क्यों ना उसके रंग में रंगे। लबों पर हमें हंसी लेकर, आंखों में नए ख्वाब सजाकर, इस भोर सुहानी का खुलकर मुस्कुराकर स्वागत करना है और धन्यवाद देना है कि आज उम्मीदों के साथ हमें कदम बढ़ाने को एक बार फिर से भोर सुहानी हमारे साथ आई है, कदम से कदम मिलाकर। तो क्यों ना इस भोर सुहानी को मिलकर सब गाते हुए दिन की शुरुआत करें।